पैसे दे मुझे, हमें जाना है। दिया दिया, चलो चलो चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी।